0: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم।
0: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
1: بسم الله الرحمن الرحيم।
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो, उधर रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: आइए आलमी योम हेपेटाइटिस के मौके पर माहिरीन से जानिए कि पाकिस्तान को हराने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। मेहमान
1: प्रोफेसर डॉक्टर साहिर मोहम्मद चन्ना, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, प्रिंसिपल गुलाम मोहम्मद माह मेडिकल इंटरप्रिटर।

0: to Mokala. Address Agha Homeopathic Clinic, Police Headquarters Chowk, Sakhar. Rabte je lai 03-26-40. 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस के मुश्तरका तावन से पेश किया जाएगा प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ, आपके होस्ट आगा जब्बार खान के साथ प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन टर्न फिजिशियन हेरा मेडिकल सेंटर सी एन प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड हेपेटाइटिस बी अदभूलिए DAFM 88
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोगी ट्रीटमेंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
3: जिसकी फजाओं में रची पसी है बन के मोहब्बत का साज GFM 88 की आवाज
2: GAFM 88 Network, Sindh Ki Awaaz.
4: Book Studio, Season 14.

0: Doctor G. हुकूमत एक भेरो बीहर पेट्रोलम शयुनि जी अघनि में वाध करे छॾी। पेट्रोल 4 रुपया 40 पैसा ऐं डीज़ल 3 रुपया 62 पैसा महांगो। पेट्रोल जो नओं अघु 331 रुपया 52 पैसा ऐं डीज़ल जो नओं अघु 378 रुपया 60 पैसा फी लीटर थी वियो। पेट्रोलियम डिवीज़न पारां 24 जुलाई लाइ पेट्रोलियम शयुनि जे नवनि अघनि जो नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में गैर मुल्की सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दीअ खे पूरी ताक़त सां चिथे छॾींदासीं। पिराक्सी अंसर बलोचिस्तान में तशदुद खे हथी ॾियण, इस्तेहकाम खे कमज़ोर करण ऐं अमन खे टोड़ण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। हथियारबंद फ़ौज जे फ़ैसिलाए ते जवाब में अवाम जे इतिहाद ज़रिए दुश्मन जे नापाक इरादनि खे नाकाम बणायो वेंदो। बलोचिस्तान जा मुबेवतन ऐं हिमत वारा माण्हू सूबे जे सभ खां वॾी ताक़त आहिनि। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जीएसटीओ में वी नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान खिताब कंदे चयो त दहशतगर्दी जे खात्मे ताईं फितनतुल ख़ारिज ऐं फितनतुल हिंदुस्तान ख़िलाफ़ कारवायूं जारी रहंदियूं। दहशतगर्दनि जो ढांचो जिते बि हूंदो तबाह कयो वेंदो। लाॻीतो कोशिशुनि ऐं आवाम जी हिमायत सां बलोचिस्तान में जटादार अमन क़ाइम कयो वेंदो। सिंध काबीना पारां वफ़ाक खां 5 लख मीट्रिक टन कणक ख़रीद करण जो फ़ैसिलो। सरकारी मुलाज़मनि जी तफ़री ऐं सफ़री अलाउंस में वाध जी मंज़ूरी। मईशत, मौसमियात, मसनूई ज़हानत ऐं आबी वसीलनि बाबति 4 टास्क फोर्सिस बि जोड़ियूं वयूं। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जे इजलास दौरान अहम फ़ैसिला। तालीमी बोर्ड जे चेयरमैन जी उमिरि जी हद 50 साल मां वधाए 63 साल कई वई। सिंध सेक्रेटरिएट, वज़ीरी आला सेक्रेटरिएट, सिंध असेंबली ऐं गवर्नर हाउस जे मुलाज़मनि लाइ सिहत इंश्योरेंस वारी सहूलियत में वाह जी मंज़ूरी बि ॾिनी वई। वॾे वज़ीर पुटको ऐं मावा खां सख़्त कार मर्कज़ी हुकूमत पीपल्स पार्टीअ जी सिंध खे ख़बर आहे त केर फार्म सते त शर्जील मेमण चयो आहे त असां रुगो जमहूरियत लाइ वफ़ा कर पियो ठाहियो वञे। आज़ाद कश्मीर में पीपी अक्सरियत सां कामयाबी माणींदी। समूरो पंजाब बरसाति में बुडल आहे पर क़ौमी मीडिया कुझ बि न पई ॾेखारे। बलोचिस्तान जे इलाइक़े मस्तोंग में हथियारबंदनि जे हमले में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ गार्ड समेत शहीद। जेकमबाद वासी एडिशनल सेशन जज तारक लाशरी समेत 2 ॼणा ज़ख़्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कारवाई तेज़ करण जो हुकुम। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज भुकीअ चयो आहे त जजिस मथां हमिलो रियासत मथां हमले बराबरि आहे। दहशतगर्दनि खे कंहिं बि सूरत में माफ़ न कयो वेंदो। सिक्योरिटी फोर्स जे मस्तूंग में कार्रवाई। फितनतुल हिंदुस्तान जा 6 दहशतगर्द मारिजी विया। केतिरा ई गिरफ़्तार। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि दहशतगर्द कार्रवाइयुनि खां खंड कोच वारे इलाइक़े में ऑपरेशन करे दहशतगर्दनि जा केतिरा ई थाक तबाह कया विया। गिरफ़्तार थियलनि में दहशतगर्दनि जे सहूलतकार समेत मर्द ऐं औरतूं बमबार पिण शामिल आहिनि। दहशतगर्दनि जे थाकनि वटां वॾे मिक़दार में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ कयो वियो आहे। दहशतगर्द जे ख़ात्मे ताईं कार्रवाइयूं जारी रखियूं वेंदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जुड़ियों, चायों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Har din har pehar zindagi ki lehar GFM 88 network.
3: Nabi ka maula rakh lo haram kar
4: पंहिंजी पंहिंजी हूंदी आहे त साईं मुंहिंजा को दौर हो जॾहिं घर में मौजूद वॾड़ा राति जे पहर में घर जे मिड़नी ॿारनि खे गॾु करे जिन ऐं परियुनि जे किरदारनि वारियूं आखाणियूं ॿुधाईंदा हुआ, जिन खे ॿुधण सां ॿारनि में ॼाण सां गॾोगॾु सोचण समझण जी सलाहत बि ज़हनी सुजाॻी ऐं मुताले करण जो उत्साह पैदा थींदो हो। उहो ॿार जॾहिं वॾो थी पंहिंजी अमली ज़िंदगी में कदम रखंदो हो त कंहिं बि ॾुखे मोड़ ते उन्हनि आखणनि मां पिरायल जेको सबक़ हूंदो हो सदन रहनुमाई कंदो हो। भले खणी उहे वॾड़ा जेको आहे सो उन ॻाल्हि खां वाक़ुफ़ न हुजनि, पर जेकॾहिं अव्हां चाहियो था त अव्हां जा ॿार ज़हीन थियनि त उन्हनि खे आखाणी ॿुधायो। पर अॼुकल्ह जी टेक्नोलॉजी वारे दौर में त ॿारनि में आखाणी ॿुधण जो को शौक़ ई कोन्हे, ऐं असांजा वॾड़ा टाका हर कुझु आहे हाणे दौर जो आखाणियूं बरज़बान ॻाल्हाइण सां ॿुधण सां इंसान जे ज़हन में विहंदियूं। पर ख़ैर हिकिड़ो ख़ूबसूरत नगमो ॿुधूं पिया, गॾिजी इंजॉय कयो।

जी समय प्रोग्राम रोशन सुबह में अस खां सवाल पुछो है त गर्मी जो जे चिटरू थन्दन उन नाला बुधायो केतरियूं चिटरियूं निसरी चुकियूं केतरियूं बाकी रहल तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था मोबाइल जे SMS ज़रिए बि मोबाइल ते SMS ज़रिए तव्हां खे मोकिलण जो आसान तरीक़ो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते LRK लिखी स्पेस ॾींदो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो सही जवाब लिखी करे तव्हां सेंड कंदव ट्रिपल जी GFM88 जी ID ते बि तव्हां असांजे फेसबुक ते बि पंहिंजा नाला मोकिले सघो था सवाल जो सही जवाब बि ऐं स्टूडियो जे मोबाइल नंबर ते कॉल करे बि पंहिंजे सवाल जो सही जवाब ॿुधाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332-1322-88 ऐं साईं मुंहिंजा कुझु दोस्तनि जा नाला जिन असांखे सवाल जा सही जवाब ॾिना आहिनि ऐं सवाल जो सही जवाब असांखे अव्हांखे आख़िरि में ॿुधाईंदासीं पर दोस्तनि जा नाला अव्हां ताईं ज़रूर पहुचाईंदासीं जो नाला घणा आहिनि ऐं अली खान नारे जो ॻोठी खां मोहम्मद मंगरियो ऐं फरहान अली लॻे

0: 阿 T 家中咪。
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उदंदा रहो उदंदा रहो
2: इट्स 10:30 एएम दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम
4: क्या आप आसाबी दर्द जोड़ों की तकलीफ
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ
4: जी हाँ
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है
5: आसाबी दर्द जोड़ों का दर्द
4: गर्दन और कमर की तकलीफ
5: पट्ठों के खिंचाव मोच
4: चोट पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद
4: मुतासरा जगह पर दिन में दो से तीन मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का

0: एहसास पाएं।
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
0: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो

0: प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
3: मेरा विरोही MBBS FCPS कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन शेख जैद विमेन हॉस्पिटल लाड़कानो माहिर अमराज नॉर्मल डिलीवरी सीजर ऑपरेशन औरतुन में अंडेदानी बच्चेदानी रसोलिन जो इलाज ऑपरेशन बेओलादी जो खास इलाज टेस्टों हमल दौरान ब्लड प्रेशर शुगर बेन बीमारियों जो इलाज औरतुन में गैर जरूरी पानी खून जो इलाज याद रखा गरीब मरीजन के खास रियायत डिनी वी डॉक्टर सुमेरा बिरोही औरतुन जे बीमारियों जी माहिर एड्रेस सिंध मेडिकल सेंटर VIP रोड लाड़कानो
4: टाइम रोजानो शाम जो 5 बजे का रात जो 8 बजे तई आचर सुबह जो 11 बजे का मंझन जो 3 बजे तई
3: वधिक मालूमात जे लाए मोबाइल नंबर 0333-307-153।
5: यार कुछ डियन खां चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो
6: त पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी
5: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा
6: बिल्कुल फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंद ते आसानी सा जजब थी सूर आई सोडियम आराम पहुंचाने में मदद दे थी
5: सिर्फ चेल ही सूर लाए
6: ना दा आसाबन जो सूर जोड़न जो सूर पुराने जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद है
5: इस्तेमाल किए कजे
6: मुतासिर थे हंद ते डी में बखा 3 भेरा नरमी सा लगायो आराम से एहसास हासिल करो जी हाँ फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट सूर का आराम हर रोज हर कदम अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट
7: मोरो
8: नौशहरो
7: मीरपुर खास
8: लाड़काना
7: सखर
8: गूंज रही है हर जगह पर
7: सिंध की आवाज
8: GFM 88 नेटवर्क।

जीअं साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असीं अव्हां खां सवाल कयोसीं त जेका हीअ गर्मियुनि जी मौसम आहे, गर्मी मौसम में चिट थींदी आहे, चिट काफ़ी क़िस्म जी हूंदी आहे, उन्हनि जा नाला हूंदा आहिनि, उहे नाला असां अव्हां खां पुछियासीं त पंहिंजो चिटां कहिड़ियूं कहिड़ियूं निसरी चुकियूं आहिनि ऐं कहिड़ियूं रहियल आहिनि। उन में काफ़ी दोस्तनि सवाल जो सही जवाब ॾिनो आहे ऐं कुझु नाला दोस्तनि जा असां खणी बि चुका आहियूं, पर अव्हां खे ॿुधाईंदासीं त चिटनि में ड्रब बि आहे जंहिंखे असां सर बि चऊं ऐं लओ बि आहे, तिर बि आहे, काफ़ी निसरी चुकियूं आहिनि ऐं बाक़ी जेके तमामु वॾे में वॾियूं जेके हिन चिटूं उहे रहियल आहिनि जंहिंमें कांह जो जेको ॿूढ़ो हूंदो आहे उहो निसरंदो आहे तकरीबन 18 खां 20 अगस्त ते निसरंदो आहे, त कांह जी गर्मी ॿुट एतिरी हूंदी आहे चवंदा आहिनि त कांह, ऐं आख़िर में ॿूढ़ो बि आहे जेको नाड़ो बि आहे, तिर बि आहिनि, बहरहाल काफ़ी अहिड़ियूं जेको आहे चिटूं आहिनि जेके निसरंदियूं आहिनि, जेके ख़तम थी वेंदियूं आहिनि, त हुन सां मौसम थधी थींदी वेंदी आहे ऐं मौसम सर्दीअ तरफ़ रवां दवां थींदी आहे, त इहे चिटनि जा नाला आहिनि जेके ॿाहिरि जा माण्हू अक्सर सुञाणींदा आहिनि। उनखे शहर जो माण्हू न सुञाणे सघंदो पर ॿाहिरि जो माण्हू सुञाणींदो त ड्रब छाहे, तिर छाहे, लओ छाहे, कांह, सर, ॿूढ़ो, नाड़ो, बहरहाल काफ़ी इहे निसरियूं आहिनि, निसरी चुकियूं आहिनि पंहिंजो इहे चिटूं ऐं कुझु रहियल आहिनि, इहे हुनजा नाला हुया। पर साईं मुंहिंजा इन्हनि पंहिंजो चिटनि सां गॾु वण जी पोखाई ज़रूरी आहे ऐं उन सां गॾु वणनि खे कटणु न खपे, जेके वण असांजा ॿेला आहिनि कटिजी चुका आहिनि ऐं काफ़ी माण्हू वाहनि तऊं ॿेलनि मां वण कटनि था। वण कटण खां पोइ काफ़ी त हिकिड़ो पंहिंजो फर्नीचर त ठहे पियो पर असां जेका आलूदगी थिए थी उहा ख़तम न पई थिए, उहा वधंदी वञे पई ऐं वणनि लॻण सां पंहिंजो मौसम बहितर थींदी आहे ऐं जेको आहे सो जेके हवाऊं लॻंदियूं आहिनि, तूफ़ान ईंदा आहिनि, ॿेला जेके आहिनि उन तूफ़ान खे रोकण में मदद कंदा आहिनि। बहरहाल गुल ॿूटा वण असांजे साह खणण लाइ बि तमामु बहितरीन आहिनि, उन जे करे कोशिशि कयो त घणे खां घणा वण पोखियो, घणे खां घणा ॿूटा पोखियो जंहिंमें गुल हुजनि, गुलाब हुजे, राबेल हुजे, चमेली हुजे, जेतिरो थी सघे वण पोखियऊं, जेतिरो थी सघे गुल पोखियऊं, ॿूटा पोखियऊं, त हुन में असांजी आलूदगी ख़तम थींदी ऐं असांजे साह में आसानी थींदी।

जी साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजे सवाल जो जेको सही जवाबु हुयो त काफ़ी मौसम जेको आहे सो गर्मीअ में चिटरां थींदियूं आहिनि, जेके चिटरां ख़तम थी चुकियूं आहिनि, जेके निसरी चुकियूं आहिनि, जंहिंमें ड्रब, तिर, लहो ऐं बाक़ी रहियल कांहो, सर, बूड़ो जंहिंखे चऊं, नाड़ो आहे, काफ़ी चिटूं रहियल आहिनि, कुझु गुज़री चुकियूं आहिनि। इहे गर्मीअ जूं निशानियूं हूंदियूं आहिनि ऐं उन में कुझु दोस्त नाला बि कुझु असां वरितासीं, कुझु नाला रहियल आहिनि अवां जंहिंमें दोस्त आहिनि आसिफ़ नवाज़, महर चक कचे खां, हाफिज़ मोहम्मद हनी फिरंद, प्यारो रिंद, ॻोठु जीअंद रिंद जेकाबाद खां, महबूब शर, रिज़वान अली, इमरान अली शर ऐं नंढड़ी उज़मा ऐं असमा शर ठरी मीरवाह खां, ऐं रियाज़ जरवार ॻोठु आलम खान जरवार खां, ऐं मीर खादिम हुसैन मलिक रोहिड़ी सखर खां, ऐं मोहम्मद शरीफ़ छुटो, नादर अली छुटो, दरेजी बलोचिस्तान खां, आसिफ़ पहंवर, बशीर पहंवर उनड़ चौक खां, ॻोठु मोलड़े माशी खां, लग बकापुर खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तियार अली, ज़हीरबा सोलंगी, नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठु कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं ग़ुलाम रसूल कुंभर, ॻोठु अहमद खान लाशारी खां, नियाज़ अली लाशारी, नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठु हसू जतोइन खां, मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद नसरुल्ला जतोई, ॻोठु मोहम्मद कासिम चांडियो खां, अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ऐं ॻोठु छुटो मक्सी लॻे कंगन खां, सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, यारमंद करोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद अली महिसर। त समिन अवां दोस्तनि सभिनी जी महिरबानी ऐं आख़िर में शमन अली मीरा दोस्तनि जे नाओ पिया कयूं।

0: एनल जैसे क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से अप करें।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत। FM 88 की आवाज,
1: GA FM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मोरो
1: नौशहरो
2: बुरखास
1: लाड़काना
2: सखर
1: गूंज रही है।
3: अपना शहर अपना घर मठियारी, और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
4: It's 11 AM। This time check is brought to you by
5: Al Habib Current Plus Account। भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: अलाउंस में 9 लख 10 पदायगिन ते एतराज कयो वयो। ऑफिस जे मुंतकिलीअ ते 39,98,000 बिल्डिंग जे भाड़े जी मद में 53,00,000 पेट्रोल स्टेशनरी प्रिंटिंग ऐं ट्रांसपोर्ट खर्चनि में माली ज़ाब्तनि जी भञकड़ी बाबति ऑडिट में निशानदेही। आई टी सामान मशीनरी ऐं फर्नीचर जी मरम्मत कोर्ट में

खाणोट वासी पोरेत नौजवान कंडियारो भरसा फुर मज़ाहमत ते कतल वारसन जो मंजूर आबाद में इंडस हाईवे ते धरणो ट्रैफिक मुअत्तल वारसन चयो हथियारबंदनि ट्रक रोके नौजवान एजाज खोसो के गोरियूं हणी कतल कयो नौजवान जा कातिल गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे।

मासूम बाड़े अगवा का ज्यादती जो निशानो बणाए बेदर्दी से कतल जवाबदार पुलिस के मुबैना मुकाबले में मारजी वयो। क्या माड़ी में समुंड वेझो बोड़न मां दुआ धीअ उमर जो लाश मिलियो। बाड़ी के मुबैना ज्यादती जो निशानो बणाए कतल कदर जवाबदार मुकाबले में मारजी वयो। डीआईजी दखण चयो आहे त सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से गिरफ्तारी लाइ पहुतल पुलिस टीम ते जवाबदार फायरिंग कई। जवाबी फायरिंग में मारजी वयो। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाली सां ज्यादतीअ जी तस्दीक थी आहे।

ऐं हिकु वण सिंध अमर जे नाओ केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे वण पोखण वारे सॾ खे भरपूर मोट सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾ ते सिंध वासियुनि ऐलान तारीख़ खां अॻु ई वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज़ ऐं कावस पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: यार ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़िया है। हलण वेहण हर कम दुख्यो लगे थो।
3: तो पोइछा अन्या तई फकीरी एनएल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
2: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
3: बिल्कुल अदा, कुदरती जुजन सा तैयार कयल फकीरी एनएल जैसे क्रीम मुतासिर हंदते जल्दी जजब थी। सूर सोडियम जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोडन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्जिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
2: इस्तेमाल किए कजे,
3: रुगो मुतासिर हंदते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच। जेकरे उमरे या हजते उनन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
2: वाह, पोए अजी वठींदस।
3: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडवी पांजे वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6।
5: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि उसे अपने महबूब के सिवा कुछ सुझा ही नहीं देता।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।
3: दिल की सदा तो अर्ज जो भी है, मगर क्यों चाहे
1: यार बच्चे वाकिफ क्यों नहीं है।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: मेरी बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीजा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: आशा, आशा, आशा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट आउट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: It's 11:15 AM.
3: This time check is brought to you by
4: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: Hak sach jo awaaz, geet sangeet jo awaaz, ye Hyderabad Matyari FM 91.6, Sindh jo awaaz, udarda raho.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: पोए भला छा थियो खुश रहूं था पान में बई गम न आहे को रहयो खुश रहूं था पान में बई गम न आहे को रहयो मोहब्बतू दींदा रहया सी पो भला छा थियो होश के ए जोश के थी यार दुनिया अज दिसे होश के ए यार दिसे जिल भी छिना रिश्तो करिश छा थी पयो।

प्रोग्राम में दोस्तों जा मैसेजेस भी शामिल कंदा हलो असा सा गदा है असन प्यारो भा आई अब्दुल रहीम फ्रॉम सखर अदा अब्दुल रहीम केड़ा ल नवा जा ठीक है तो सही है आवाज में तरह में अरब करीम तवहा सबनी मुजन भाइर ने मेरे आखिर खिदत कई हुंदी आई तवहा जे लिए स्पेशली असा थोड़ा सारी दुआओं कंदा है छो जो तवहा सा प्रोग्राम में हमेशा शामिल थिना है मोहब्बत भरे मैसेज कंदा है आई मोला खुश रखंदा तवहा के अदा जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम अदा सई कैसे हो तो वालेकुम अस्सलाम भा मुजा मैं बिल्कुल ठीक ठाक है अदा जन के शो पसंद अचे पो चवन था ही शो नाइस है मेहरबानी अदा जन दुआ भी कन पाया चवन था मैडम सुमेरा कब आएगी अदा मुझे सही बिल्कुल मैडम अची वी कें पानी जाती मसरूफियात सबब फिल वक्त असा GFM नेटवर्क का डिस्कनेक्ट लगी पई है जी उन मसरूफियात खत्म थी वी तो वरी असा सथ में शामिल थी वी उन कुछ इंतजार अजा है कुछ तक इंतजार करणो पवो मेहरबानी अदा अब्रहिम तवी कुर्बत तवाजों मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए याद रहद असा गड है उनड़चो खा आसिफ पमर बशीर पमर चवन था अदा अस्सलाम वालेकुम केड़ा हाल भाव जहा मैं बिल्कुल ठीक ठाक आया तवाज दुआओं से गडन अदा असा भी तवे दुआ गोयूं तपेशली प्रोग्राम में भलीकार चवान तो मुख्य इन लगी रो है तेरों दफो मुझे शो में शामिल थे आयो जैसे लख कुर्ब तवाजा गोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो का मोहम्मद हारून संदीलो पांजो प्रोग्राम बुधी रो है अदा हारून कड़ा हाल नवा जहा ठीक है उम्मीद है तवा बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा अदाजन चो है रऊफ मक्सी जो असा के सॉन्ग बुधरा तो हाजिर मुझा मिठा रऊफ मक्सी जो सॉन्ग अवा के जरूर बुधाईदी तुझे सही अड़े तरीके से तवा भी असो में शामिल थी सको था शामिल थे तरीकेकार एक दफो बीह तुझाई हल तो मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वनो MRO लिखो स्पेस टू स्पेस का लिखो पांजो नालो पांजे गोठ शहर नालो लिखी कर मोकलो असा 888

0: हमें रचना जो खूबसूरत आवाज अवान जो सुंदर सवातू तो मुझे मीठा सही दोस्तों जहाँ मैसेजेस भी करे वा उ भी शामिल कदा हल्दी पर वक्त थो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो हल्दी ब्रेक की तरफ ब्रेक का वापस इंदी वापस अची कर बुधाईंदे अवान के पसंद की चूंड मौसीकी तवाजा मैसेज पैं प्रोग्राम की सूह बनाई
1: सिंध का है ये मुनफरिद।
2: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
3: GFM 91.6
4: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by
5: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
6: Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Jildi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
7: Fakiri Neem Prickly Heat Soap.
6: Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
7: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
6: झुरियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
7: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार
6: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
7: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉफ्ट
6: स्टोर से कीजिए
8: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।
2: अक्षर ऐं चवंदा दादा सलाम कबूल पवन त वालेकुम असलाम भाउ मुंहिंजा कबूल पिया तव्हांजा सलाम मुंहिंजे अखियुनि ते ऐं चवनि था त असांखे अनवर विस्तड़ो ऐं नूरमोहन सोलंगीअ जो आवाज़ में कलाम ॿुधायो त हाज़िर मुंहिंजा मिठा ज़रूरु।

रऊफ मक्सी जी खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजूं समातूं त मुंहिंजा मिठा साईं, तव्हां बि असांजे शो में शामिल थी सघो था अहिड़े तरीक़े सां जहिड़े तरीक़े सां असांजा ॿिया दोस्त असांजे शो में शामिल थिया। अदा हारून संदील जी फरमाइश ते ही सॉन्ग असां प्ले कयो आहे, अदा इंजॉय कजो, ॿुधजो मुंहिंजा मिठा साईं, फीडबैक।

0: पाकिस्तान
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: इट्स 11:30 AM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुदरती जिजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोप्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

ही बैरल खां भी वधी वही है। ब्रेंड कचो तेल फी बैरल $101 है। मरबान कचो तेल $107 फी बैरल विक्रो थी रहा है।

कहें मुल्क जा असा मंजमंद करे हर जाने तौर इस्तेमाल करण जा नतीजा खतरनाक थी सकन था। ईरानी परदेही वजीर अब्बास सिराकची चयो आहे त ट्रम्प जे बयान ते खुश थींदड़ समझी वठन त हुकूमतन बेन मुल्कन जा असासा मंजमंद करण शुरू कया त सभिनी जो नुकसान थींदो। सदर ट्रम्प ईरानी असासा नुकसानन लाइ इस्तेमाल करण जी धमकी डि॒नी आहे।

0: स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी खाते जे डी जी मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफिस में 1,92,00,000 का वधीक जी करप्शन जो इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑडिट रिपोर्ट कार्रवाई लाइ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी खाते डा मोकले छी। ऑडिट में बिन ऑफिसरन के 9,19,000 रूपया एग्जेक्टिव अलाउंस 28,25,000 रूपयनि जी अलाउंस ऐं 9,33,000 रूपयनि जी पघार अलाउंस अदायगीनि ते एतराज़ कयो वियो। ऑफिस जी मुंतकिलीअ ते 39,98,000 बिल्डिंग जे भाड़े जी मद में 53,00,000 पेट्रोल स्टेशनरी प्रिंटिंग ऐं ट्रांसपोर्ट ख़र्चनि में माली ज़ाब्तनि जी भञकड़ी बाबति ऑडिट में निशान रही थी। खाणोट वासी पोरेत नौजवान कंडियारो भरसां फुर मज़ामत ते कतल। वारसन जो मंज़ूराबाद में इंडस हाईवे ते धरणो, ट्रैफिक मुअतल। वारसन जो हथियारबंदन ट्रक रोके नौजवान एजाज कोसो खे गोलियूं हणी कतल कयो। नौजवान जा कातिल गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। हिकु वण सिंध अमड़ जे नाओ। केटीएन न्यूज़ ऐं कावश जे वण पोखण वारे सॾ खे भरपूर मोट। सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ जे असरनि खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारे सॾु ते सिंध वासियुनि ऐलानियल तारीख़ खां अॻी वण लॻाइण शुरू करे छॾिया। केटीएन न्यूज़ ऐं कावश पारां 24 खां 31 जुलाई 2026 ताईं वण पोखण जो सॾु ॾिनल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खां चेल जो सूर, जोड़न जी तकलीफ, अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ चेल ऐं सूर लाइ
4: न अदा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंधु अहसासु हासिल करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट। सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: मेहरान की वादी, मेहरान मेहरान की पहचान, सिंध की आवाज,
1: हक सच जो जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।

मुंहिंजो मिठा साईं, ज़िंदगीअ में कामयाबी हासिल करण जे लाइ सिर्फ़ महिनत ई काफ़ी न आहे, पर सुठी सोच ऐं सुठी गुफ़्तगू बि तमामु अहम आहे। जेकॾहिं हर हाल में मुस्बत सोच रखे ऐं ॿियनि सां सुठे नमूने ॻाल्हाइजे त न रुगो माण्हुनि जूं दिलियूं खटे सघजनि थियूं, पर पंहिंजी ज़िंदगीअ में बि तरक़ीअ जा नवां दर खोले सघजनि था। मुस्बत सोच इंसान खे मायूसीअ खां बचाए थी। जेकॾहिं को मसलो साम्हूं अचे तॾहिं नाउमीद थियण बदिरां उन जो हल ॻोल्हण घुर्जे। अहिड़ी सोच इंसान खे मज़बूत बणाए थी ऐं अॻिते वधण जो हौसलो ॾिए थी। साॻी तरह मिठा लफ़्ज़ ऐं सुठो इख़लाक़ इंसान जी शख़्सियत जो ज़ेवर आहिनि। हिकु सुठो जुमिलो कंहिंजे दिल खे ख़ुश करे सघे थो, जॾहिं त लहजो दिलनि में फ़ासिला पैदा करे सघे थो। उन करे हमेशह अदब, एतराम ऐं मोहबत सां ॻाल्हाइण घुर्जे। यादि रखो, जेको माण्हू सुठो सोचे थो, सुठो ॻाल्हाए थो ऐं नेक अमल करे थो, कामयाबी उन जो मुक़दर बणजी वेंदी आहे। अचो त अॼु खां उहो अहद करियूं त हर हाल में मुस्बत सोच इख़्तियार कंदासीं, ॿिए सां सुहिणे इख़लाक सां पेश ईंदासीं, पंहिंजी ज़िंदगीअ खे बहितर बनाइण जी कोशिश जारी रखंदासीं।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: 12 दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मुअसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द सोजन वरम फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रोबीट्स फॉर्मूला आपको बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो दिन का शो।
6: एजाज और मेहमान।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खत्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

तव्हांजा वेठा थी कुझु दोस्तनि जा मैसेजिस बि आहिनि उन्हनि खे बि पंहिंजे प्रोग्राम जी मुंहुं बणाईंदा हलंदासीं। तव्हांखे मोहबत ऐं प्यार में जा हीउ मैसेज असांजे मोकिलिया आहिनि त असांजो बि इहो फ़र्ज़ु थिए थो त असां उन्हनि मैसेजनि खे प्रोग्राम में शामिल कयूं। त अदा 78 मोरीअ खां राजा हमीर चंद पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो ऐं किशोर कुमार, पवन कुमार ऐं टेलर मास्टर चए थो आज छुट्टी पे। अच्छा ठीकु आहे, तव्हां पहिरियों मैसेज कयो, मां तव्हां खां टेलर मास्टर जो पुछो त तव्हां इहो चयो त हू अॼु छुट्टीअ ते आहे। अच्छा, हुनखे तव्हां मोकल ॾिनी आहे ऐं बरसाती मौसम खे हू इंजॉय करे रहियो आहे, महिरबानी आहे। ऐं तव्हां फौज़िया जे सॉन्ग जी फरमाइश कई आहे त फौज़िया जो सॉन्ग मां प्ले करे छॾियो आहे ऐं तव्हांजे मैसेज पढ़ण खां सवाइ। अच्छा, उहो तव्हांजे नाले अदा ठीकु हुजो, ख़ुशि हुजो ऐं क़बूल कजो। ऐं चवनि था त अदा मीरपुर ख़ासि मींहुं बारिश तो नही हुई है मगर मौसम अच्छा है।

अहिड़ो ई साॻी सूरत हाल आहे मोरे में। मौसम सुठड़ी आहे, हफ़्स वारी मौसम आहे, पर बरसाति नाहे पई। राति चंद कणियूं पयूं हुयूं ऐं उहे सिर्फ़ चंद कणियूं ई हुयूं। ऐं हिन वक़्तु सख़्त बरसाति जी सॼी सिंध खे ज़रूरत आहे, त तव्हां सभिनी खे चवंदासीं त तव्हां वधि मां वधि दुआगो थियो अलाह जे दर ताला ताला ख़ैर जूं बरसातूं सिंध जे मथां वसाए, त जीअं सिंध में जेका पाणी जी खोट, जेका फसलनि खे हिन वक़्तु तमामु घणी ज़रूरत आहे पाणीअ जी न, उहा पूरी थी वञे। ऐं उन खां पोइ जेके जानवर आहिनि उन्हनि जे लाइ बि पाणी जमा थी वञे, जेके पखी आहिनि उहे बि बरसाति जे मौसम खां पोइ पाणी पीअंदा आहिनि ऐं बरसाति में इंजॉय कंदा आहिनि, त सभिनी खे बराबरि जेतिरो मौको मिली वञे त असां बि दुआगो आहियूं, तव्हां बि दुआगो रहिजो त हिन धरतीअ जे मथां अलाह ताला पंहिंजे रहमत जा ककर ज़रूर वसाए। त महिरबानी हदा किश्वर, तव्हांजी तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया आहियो। अदा अब्दुरहीम जो मैसेज अची चुको आहे, चवे थो मास्टर मंज़ूर जे कलाम असांखे ॿुधायो त पहिरां मास्टर मंज़ूर ऑलरेडी मां प्ले करे चुको आहियां ऐं उमेद आहे त तव्हां उहो ॿुधो बि हूंदो ऐं सॉन्ग तव्हांखे पसंदि बि आयो हूंदो। हिन वक़्तु बशीर जतोई जे आवाज़ में हिकिड़ो सॉन्ग आहे मुंहिंजे प्ले लिस्ट में, अचो तव्हांखे उहो थो ॿुधायां।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती हो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क।

0: the print that thought.
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GFM 91.6।
4: यार ही गोडन जो सूर है, चेल जो सूर तो मुझे जान ही करी छड़ी आहे। हलण वेहण हर कम दुखियो लगे थो।
5: तो अन्या तई फकीरी एनल जैसे क्रीम इस्तेमाल न कई थी?
4: न यार, छा वाकई फायदो करे थी?
5: बिल्कुल अदा, कुदरती जजन सा तैयार कैल फकीरी एनल जैसे क्रीम मुतासिर हंदा ते जल्दी जजब थी। सूर सोडिय जिस्म जी नसन जी छिक आई अकराहट मां आराम पहुंचाने में मदद करे थी। चेल जो सूर हुजे, गोरन जो सूर, कंध आई कुलन जी तकलीफ या वर्दिश का पोए छिक हर हालत में बेहतरीन साथी। फकीरी एनल्जेसिक क्रीम
4: इस्तेमाल किए कजे
5: रुगो मुतासिर हंद ते डीएम में 3-4 भेरा नरमी सा लगाए आई आराम जो एहसास वच आई बुध जेकरे उमरे या हज ते वणन जो इरादो थई त फकीरी एनल्जेसिक क्रीम जरूर पाण सा गड खणी वंजा।
4: वाह, पोए अजी वठींदस।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम अडी पांजी वेजे मेडिकल स्टोर ता नालो वठी खरीद करयो।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।